एकता वतन की रोशनी और आवाज। नमस्कार प्रिय श्रोताओ, आज का हमारे कार्यक्रम राष्ट्र एकता दिवस को समर्पित है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्र एकता दिवस के 19वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर के कि आपके घरों में हमेशा शांति, प्रेम, आपसे सद्भाव, खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम अपने प्रिय तजिकिस्तान के लिए स्थायी शांति, अतुट राष्ट्र एकता तथा सुख समृद्धि से भरपूर जीवन के कामना करते हैं। राष्ट्र एकता दिवस के हृदय शुभकामनाएं प्रिया देशवासियों।

इतिहास ने सिद्ध किया है कि शांति अपने आप स्थापित नहीं होती। इसके प्राप्त करने के लिए दूरदर्शी और विवेकपूर्ण नीति, जिम्मेदारी की भावना तथा व्यक्तिगत और समूहगत हितों से ऊपर राष्ट्र हितों को प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी कारण तजिक जनता का शांति और स्थिरता के लिए किया गया प्रयास एक मजबूत आधार बन गया, जिसे सारे राष्ट्र मिलाप राज्य व्यवस्था के पुनर्निर्माण और राष्ट्रीय स्वतंत्रता को सुदृढ़ करने के प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हुए। सन 2024 में इस ऐतिहासिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए जाने की 19 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इन वर्षों के दौरान

Prati bagioni sabat farveshesh zordia gake deshka pratek nagarek shanti ora rasha ekta ki opalav dioki raksha orun he sudrar kanemi apna yogdande kevalapse samana sayog orek jota ke vatavaran mehi rasha ke pragati or samrede sunushet ke jasakti he samilan ke samapan parasha ekta ko mazbut karne raja nite ke sapal karen vayantat hasamajek sayoke vekasme ulek nya yogdande nevale Aneka viaktio or pratinidioko prashanseta pater evana samapan pater barhana kiegaya. Upastihet logone svatantar Tajikistan ki unnati or simredekele apne rashnat maga parayasonko age behe jari rakne ki pratibandata viaktke. Jinsi ki Tajikistan ganaja ki rashrapati ka kare ki shekshe sans kategora sushna vibake vidvan saidulo kovatalizoda katehe. Rasha ekta keval tajik logon ke liye hai nahi balki duniya ke sabhi jatiyon aur rashtro ke liye vastav mein ek bahut bada moolya rakhti hai manav ki asiyat ke shuruaat se hai wo hamesha aisa prayas mein raha hai ke wo shanti starta aur apse samaj ke vatavaran mein jeevan vyatit kare kyunki keval ekte ke sthiti mein hai samaj vikasit ho sakta hai aage badh sakta hai urane wale pirhiyon ke liye samanjan ke jeevan सुनिश्चित कर सकता है एकता और सद्भाव लोगों को एक दूसरे के साथ मित्रता के वातावरण में रहने मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने और समाज के प्रगति के लिए मिलकर प्रयास करने का अवसर प्रदान करते हैं इतिहास ये दर्शाता है कि जिस राष्ट्र में आपसे समाज और एकता का वर्चस्व रहा है उसने महान उपलब्धियां हासिल की है आधुनिक दुनिया में राष्ट्र एकता का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि वैश्वीकरण के प्रयागराय देशों और लोगों को एक दूसरे के और करीब ला रही है ऐसे में केवल एक जुड़ समाज ही अपने राष्ट्र हितों की रक्षा कर सकता है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपने स्थिति को मजबूत बनाए रख सकता है इसलिए एकता की भावना का विकास मानव मूल्यों का सम्मान और लोगों के बीच मित्रता को मजबूत करना हर समाज का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य माना जाता है न्यूज़ वाशोइरा रेडियो ओज़े तोज़े

राष्ट्रीय एकता का मतलब पूरे देश के लोगों का एकीकरण एक आम पहचान के लिए है। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है बल्कि अपने लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक ये जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

हाँ जब तक है जा जाने जहां मैं नाचूंगी प्यार कभी भी मरता नहीं मौत से भी ये डरता नहीं लुट जाएंगे मिट जाएंगे मर जाएंगे हम जिंदा रहेगी हमारी दास्तां।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के 2 सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते 3रे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में, विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्म फेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता माधव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।

नवरोज दुशांबे में सन 2014 में निर्मित ताक अनूठा सांस्कृतिक और मनोरंजन परिसर है। इसकी शुरुआत दुनिया के सबसे बड़े चाय खाने के रूप में हुई है, लेकिन बाद में ये एक भव्य महल बन गया है। ये अपनी शानदार वस्तुकला, आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ताजिक रूपांकों के संयोजन के लिए प्रसिद्ध है। परिसर के अंदर लकड़ी के नक्काशी, सोने और अर्धा कीमती पत्थरों से सजे 12 अनोखीन हाल है। ये परिसर आधिकारिक स्वागत समारोहों, मंचों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है और निवासियों और पर्यटकों के लिए संग्रहालय, बोलिंग और सिनेमा जैसी सेवाएं भी प्रदान करता।

एकता वतन की रोशनी और आवाज। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, आज का हमारे कार्यक्रम राष्ट्र एकता दिवस को समर्पित है। सबसे पहले आप सभी को राष्ट्र एकता दिवस के 19वीं वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर के कि आपके घरों में हमेशा शांति, प्रेम, आपसे सद्भाव, खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। हम अपने प्रिय तजिकिस्तान के लिए स्थायी शांति, अतुट राष्ट्र एकता तथा सुख समृद्धि से भरपूर जीवन के कामना करते हैं। राष्ट्र एकता दिवस के हृदय शुभकामनाएं प्रिया देशवासियों।

राष्ट्रीय एकता का मतलब पूरे देश के लोगों का एकीकरण एक आम पहचान के लिए है। राष्ट्रीय एकता न केवल एक मजबूत देश के गठन में मदद करती है बल्कि अपने लोगों के विकास को भी प्रोत्साहित करती है।

प्यारे श्रोताओं, आज के प्रोग्राम में आपको एक गाने के बारे में बताते हैं जो न केवल भारत बल्कि भारत के बाहर भी बहुत प्रसिद्ध हुआ। ये गाना शोले मूवी से है, जिसको न केवल हिंदी गायिका बल्कि ताजिक गायिका ने भी गाया है। शोले फिल्म के गानों में से एक है हाँ जब तक है जा, जो कम समय में लोगों के बीच प्रसिद्ध हो गया। वो कहता है हाँ जब तक है जा, जाने जहाँ मैं नाचूंगी।

बॉलीवुड की हिट फिल्मों में से एक शोले ने सफलता के कई रिकॉर्ड बनाए हैं। शायद ही कोई ऐसी फिल्म होगी नहीं जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी सराहना मिली हो। इस गाने के बारे में जानकारी देने से पहले मूवी के बारे में बताते हैं। शोले मूवी सन 1974 की एक भारतीय हिंदी एक्शन फिल्म है। सलीम जावी द्वारा लिखी इस फिल्म का निर्माण गोपाल दास सीपी ने और निर्देशन का कार्य उनके पुत्र रमेश सीपी ने किया है। शोले फिल्म 14 अगस्त 1974 को भारत के स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुंबई में रिलीज हुई। नकारात्मक समीक्षा और प्रभावी प्रचार की कमी के कारण शुरू के 2 सप्ताह तक ये फिल्म कुछ खास नहीं चली। हालांकि सकारात्मक मौखिक प्रचार के चलते 3रे सप्ताह से इसके दर्शक बढ़ने लगे। शुरुआती हफ्तों में फिल्म की धीमी कमाई अवधि के दौरान निर्देशक और लेखक ने फिल्म के कुछ दृश्यों को फिर से फिल्माने पर विचार किया ताकि अमिताभ बच्चन का चरित्र मर ना सके। हालांकि जैसे ही फिल्म ने रफ्तार पकड़ी तो उन्होंने इस विचार को त्याग दिया। धीरे धीरे फिल्म के संवाद प्रसिद्ध होने लगे और इससे ये रातों रात सनसनी बन गई। इसके बाद 11 अक्टूबर सन 1974 को इसे मुंबई के बाहर अन्य क्षेत्रों में विशेषकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल तथा हैदराबाद में रिलीज किया गया। शोले सन 1974 की सर्वाधिक कमाई करने वाले फिल्म बनी और एक फिल्म रैंकिंग वेबसाइट बॉक्स ऑफिस इंडिया ने इसे कमाई के आधार पर ऑल टाइम्स ब्लॉकबस्टर का दर्जा दिया है। शोले को 9 फिल्मफेयर पुरस्कारों के लिए नामांकित किया गया था, लेकिन एकमात्र विजेता मधाव शिंदे थे जिन्होंने सर्वश्रेष्ठ संपादक के लिए एक पुरस्कार जीता। फिल्म ने सन 1976 के बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन पुरस्कार हिंदी विभाग में भी 3 पुरस्कार जीते। अमजाद खान ने सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता, द्वारका दिवेचा ने सर्वश्रेष्ठ छायांकन और राम येदेकर ने सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशक का पुरस्कार प्राप्त किया। शोले को 50वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में 50 वर्षों की सर्वश्रेष्ठ फिल्म के विशेष पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था।

कोई हसीना जब रुक जाती है महबूबा महबूबा ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे हाँ जब तक है जा होली के दिन दिल खेल जाते हैं इस मूवी के गाने हैं शोले का गाना जब तक है जा गाने का गायक लता मंगेशकर संगीतकार राहुल देव बुर्मन गीतकार आनंद बख्शी कलाकार हेमा मालिनी धर्मेंद्र अमजाद खान हैं इस गाने में हेमा मालिनी ने एक अच्छा डांस भी किया है जिसको लोगों ने पसंद की थी नोजिया करमतलो प्रसिद्ध ताजिक गायिका है जिसको न केवल ताजिकिस्तान बल्कि दूसरे देशों में भी सुनकर पसंद करते हैं विशेष रूप से हिंदुस्तान में नोजिया करमतलो ने भारत में संगीत सीखी थी और भारत में रहते समय इस कला को बारीकी से अध्ययन किया था अपने पहले कॉन्सर्ट में उसने कई हिंदी गाने दर्शकों के लिए पेश की थी जिनको लोगों द्वारा पसंद किए गए उनके बाद नोजिया ने दूसरे हिंदी गाने पेश करने लगे जो न केवल हमारे देश में बल्कि हिंदुस्तान और हिंदी गानों के प्रेमियों के बीच मशहूर हो गए हिंदी गानों में से एक हाँ जब तक है जाने जहाँ है जिसका एक पार्ट आप पेश करेंगे

ताजिक और हिंदी संस्कृति बहुत मिलती जुलती है इसीलिए ताजिक और हिंदी लोग एक दूसरे की कला परंपराओं नृत्यों और गानों में शौक रखते हैं ये गाना जो आज आपके लिए हमने पेश की कई गायकों द्वारा प्रस्तुत की गई थी परंतु समय की कमी के कारण सबसे प्रसिद्ध गायकों की प्रस्तुति को हमने आपके लिए पेश की हमें आशा है कि आपको अच्छा लगा गाने को सुनकर

दोस्त वो है जो थम के रखता है हाथ, परवाह नहीं उसको कौन है तुम्हारे साथ। उसकी आंखों में चमक दिखती है जब होते हैं तुम्हारे साथ। गुजर जाता है वक्त मिनटों में जब करते हैं उससे बात। दोस्त वो है जब सामने आ जाएगा खुद बयां हो जाता है दिल के हालत। कुछ सोचना नहीं पड़ता जब होती है उससे बात।